चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं। हर कद

नन्नी चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए, नन्नी चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फीएनडीएबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

कैसे लगा आपको? शमी कपूर की फिल्म राजकुमार का गाना हमने आपको सुनाए। मेंस के अंदर उजाला का मजा आप यंग ट्रेंडी एंड यूडिकेटिव द बेस्ट ऑक्टन शो ऑफ द हिंदुस्तान रेडियो हियर एंड अलेन हियर ऑफ ट्रेंडी। 7 बजने में 6 मिनट बाकी। जेस म्यूजिकल मिनुटन फॉर सेफ एंड कैप्टन अंडर डाउन मेमोरी लेन गाना फैया। हमने आज से तुम्हें en dan denk je terug aan de jaren 60 met dit prachtig lied. En als je dit lied hoort, to schreef Nanda Oshashi Kapoor, ki yaad aati hai. Je hoort Mohammed Rafi en Sangeet Kidevi Leta Didi, on the beat of Kalyanji Anandji en de tekst van Anand Bakshi. Film Raja Saab ka gana hum aapko sunayenge. Aisen mausam mein subah ke waqt jab kaam niksal hai, din hote hote to hoigal, bahut acha lagta hai sunne mein. Allemaal origineel op de draaitafel. Din aur dil ko khush kar dete hai. Ujala ka maja.

इफ्तिदाई इश्कवी हम सारी रात जागे, अब तो अल्लाह जाने की क्या होगा आगे। लता जी मुकेश जी के साथ और फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। मोई लगे तो

हमारे सभी सुनने वालों को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमारे प्यार सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप हरि को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज की जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो इनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ किए जाते हैं आप हर की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वाले और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं। और हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे लेकर शाम में 3 बजे तक, फन मानदाख तो में सातरा फन 3 सुमारखंस तो इन द मिला 3 यूर। और हमारा वेबसाइट का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर जानकारी आपको मिलेगा।

तो चलिए हमारे प्यारे सुनने वालों, आज का प्रोग्राम में कुछ मिलेजुले संगीत से हम आप सभी को खिदमत करने वाला हूं। और चलिए इस बार ये गाना आप लोग सुनेंगे, वेल रोमांटिक गीत है।

जी से क्यों मेरा दिल करता है इतना प्यार, यही यशुदास एंड श्रिया जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, तुम ही से यार तुम ही से क्यों मेरा दिल करता है इतना प्यार, गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, हमारे प्यार सुनने वालों

0: बल बल यार, कैसे कैसे कटेगा हर पल हर पल।
1: हल चल, हल चल, हल चल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। कैसे
0: पल, ये पल कैसे कटेगा, अगर प्यार हो तो पल कट जाएगा। और इस तरह से गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वालों, खास करके सोनू निगम एंड श्रेया जी के आवाज में। यू आर उजाला रेडियो।

वेल, कितना मोई, तुम जो ना कहा वो मैं सुनता रहा। और इस तरह से प्यार भरी गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, कितना मोई, कितना विशाल रोमांटिक गाने आप लोग सुने।

मुझे मुझे तुमसे इतनी सी बात है कि मुझे तुमसे प्यार है। गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे प्रीतम आरजी सिंह एंड अंतरा मिंत्रा के आवाज में, हमारे प्यारे सुनने वालों, और चलिए अब की बार ये गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा ही प्यार प्यार प्यार के गाना यार।

तुम मिला तो खुदा का सहारा भी मिल गया। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, यार जब तुम मिला तो खुदा का सहारा भी मिल गया।

मोरा पिया मोरा पिया मुझसे, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हमारे प्यारे सुनमलू। और उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे हमारे प्यारे सुनमलू,

तुझे कितना चाहे और हम, अरे यार बोलना तुझे कितना चाहे और हम। जुबिन जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने यू आर उजाला रेडियो पर। हमारे प्यारे सुनोलो, मैं हूं सुभाष और आशा है कि ये प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं आप सभी को पसंद भी आते होंगे। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा है गीत प्रोग्राम में जो आप लोग सुनेंगे अनिकेत तिवारी जी के आवाज में।

वेल तेरी गलियां ये मेरी दिल से दुआ है यार। इस तरह से गाना जो आप लोग सुने अंकित तिवारी जी के आवाज में, हमारे प्यारे श्रीमलू उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं।

Priya Saraya एंड अरिजीत सिंह, इन दोनों की आवाजों में आप इस गीत को सुने। एंड बेनी दयाल के साथ अब श्रेया घोषाल को सुनिए, युवाड़ू जला रेडियो पर।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

मेवा की डाल फट गई तो चादर बिछाओगी, चादर की कोना फट गई तो दर्जी बुलाओगी, दर्जी की सुई टूट गई।

हल्दी न छोड़े दर्दी बुलबुल न छोड़े रंग, हल्दी न छोड़े दर्दी बुलबुल न छोड़े रंग, तब मर्द बेचारा क्या करे जब रंग न छोड़े संग।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

पहली नजर का अभी आपने नाम सुने हैं उजाला रेडियो पर सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए हमें कदम ला रहे हैं उजाला मिड डे कॉफी चाय का प्रोग्राम में पिंग सिर्वी के अंदर है पिंग सिर्वी के अंदर है मोखलक या पिंग सिर्वी के मोखलक एन फन वर्मस्ट ओइट गमेते नेदरलैंड दिस टू अपने के तैयार कर सॉर्ग हरफोर दैट यू दिस है ये सोमर क्लियर ड्राइव

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

8:06 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बृहस्पतिवार है, जिस दोंदना 21 तारीख 21 मई है, 20, 26, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20, 26, 20,
के लिए 3 घंटे लगातार रात्रि में 11 बजे तक हम पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज हियर ऑन यूआर लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोहतास से। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, तहदिल से स्वागत करता हूं आप सभी को। आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, स्वागत है आप सभी को। एक शुभ रात्रि हम कहते हैं। आज कितना लवली मौसम था, मौसम का हालात तो आज इतनी सुंदर, और कल भी और भी गर्म रहेंगे, तो आप भरपूर इसे एंजॉय करें। बहुत सारे लोगों के लिए तो कल भी आखिरी दिन होंगे काम करने के लिए, फिर एक लंबा वीकेंड। जो भी है, जैसे भी है और जिस तरह से चल रहे हैं, आप भरपूर एंजॉय करें। आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों, रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब से। खा रहे हो तो स्वादिष्ट भोजन हो, काम पर हो या आप काम जा रहे हो, तो दिल लगाकर काम करना। किसी भी प्रकार आप सड़क पर हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के। मेरे प्यारे सुनो, हमारे ये प्रोग्राम के दौरान में बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे, लेकिन उनके साथ साथ भी कुछ दर्द भरे नगमाएं हमेशा दिल की आवाज में जो होते हैं, हम पेश करने वाले हैं फिर एक बार। और ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों, जो लोग ऐप करना चाहेंगे तो आपका ऐप सीधे यहाँ स्टूडियो में आएंगे। 020-363-0000 पर आप ऐप कर सकते हो। और यह आपके कामों कांच मेरे प्यारे सुनने वालों, आपकी फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, किसी भी प्रकार का जानकारी, इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं उजाला रेडियो के जरिए जो हम आपका खिदमत कर सकते हैं, तो आप अवश्य तार करें सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक अप 020-409-0007, maandag tot en met zaterdag vanaf 's morgens 10 uur tot in de middag 3 uur kunt u bellen met Sunje do Sunje, Char Sunje no, Sunje had, Sunje zat. और मेल भी आप कर सकते हैं मेरे प्यारे सुनोलो, दैट कैन नैचुरली व्हेनेवर यू विल, जब भी आप चाहते हैं आप मेल कर सकते हैं आपके कामों काज के लिए, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप मेल करिए info@ujala.nl। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, तेरे होंठों से इसको चुरा कर होंठों पे सजाया है। गीत का बोल है मेरे प्यारे सुनने वालों, नक्शलाल पुरी जी। व्हाट ग्रेट सॉन्ग इन्होंने लिखा है, और आप इसे समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो कितना प्यार है इस गीत में, और अपने जादू भर आवाज में गीत गाकर सुनाएंगे जो आज का ओपनिंग सिलेक्शन है, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार।

मैंने जब ये गीत गुनगुनाया, सच गई है ख्यालों की महफिल, प्यार के रंग आंखों में छाए, मुस्कुराई उजालों की महफिल। ये वो नगमा है जो जिंदगी में रोशनी बन के आई है, तेरे होंठों से इसको चुरा कर होंठों पे सजाया है। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, रोमांटिक सॉन्ग जिसका एक एक अल्फाज नक्शलाल पुरी जी का लिखा हुआ है। नक्शलाल पुरी जी ने कमाल के नगमाए इन्होंने लिखा है, और आज हमने सोचा क्यों ना इनके लिखे हुए गीत से ओपनिंग करें। और आवाज का जादू किशोर कुमार, ये था फिल्म मान जाइए। स्वागत है मेरे प्यारे सुनो, फिर एक बार आप सभी को तहे दिल से। ये उजाला रेडियो है, 16 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर, और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे, दिल की आवाज पेश कर रहा हूं लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। तो आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदर है। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो, ले चलते हैं एक गीत, रोमांटिक सॉन्ग फैज अनवर जी का लिखा हुआ। फैज जी ने कमाल के नगमाएं भी लिखे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। आप सुनेंगे इस गीत को, जो मिलकर गाएंगे साधना सरगम और द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू, कि मेरा दिल तेरा दीवाना कारण, मैं धरती हूं तू मेरा गगन, कभी मिलके हम ना होंगे जुड़ा, यही कहती है अब दिल की लगन। पेश करता हूं

गीत में हम गुम हो गए थे, मेरा दिल दीवाना, मैं धरती हूं तू मेरा गगन, कभी मिलके हम ना होंगे जुड़ा। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनोल फाइज अनवर जी का लिखा हुआ और कुमार सानू और साधना सरगम जी ने मिलकर गीत गाए हैं। ये था फिल्म करण का एक नगमा। अभी आपको हम ले चलेंगे, एक गीत मेरे नजर में आए हैं रूना लैला जी का और गीत बहुत प्यारा है, अभी हम पेश करेंगे। फिलहाल तो अब की बार गीत राहत इंदौरी जी इनका लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं। हम अपने गम को सजाकर बाहर कर लेंगे, एक डट भरा नगमा है और ये डट भरा नगमा फिर एक बार आपके लिए गाने वाली है साधना सरगम जी, लेकिन अब की बार विनोद राठौड़ के साथ।

हमको सजाकर बाहर कर लेंगे। तेरे ख्यालों को थोड़ा सा प्यार हम कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत लेकिन दर्द भरा, जो मिलकर गाए विनोद राठौर और साधना सरगम। राहत इंदौरी जी इनका लिखा हुआ गीत जो हमने निकाले हैं। फिल्म जिसका नाम है द जेंटलमैन, मेरे प्यारे सुनने वालों, द जेंटलमैन से हमने नगमा को निकाले और आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। दिल की आवाज आप सुन रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और आइलिन भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं हार्लेम शहर से, आइलिन और जुड़े हुए हैं भी प्रोग्राम से, मफराव एंड मनेर बिहारी अटबरीदा, मार्सबरुक का चित्रा जी और एंद्रू जी, और आमस्टलफेन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। मैंने वादा किया था कि ये गीत चलाएंगे तो रोना लैला जी का पाकिस्तानी मूवी फिल्म मन की मीत से हम गीत निकाल रहे हैं। एक गीत जो शबाब किरवानी जी ने लिखा रोना लैला की आवाज कि मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, और मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं तो शर्माऊंगी। क्या बात है,

आंखों में बसा के, आंखों में प्यार बसा के करते हैं मीठी मीठी बतियां, होंठों पे फूल खुशी के, हंसते तो बिखराए पतिया, प्यार जता के नैन लड़ाए, मैं कित जाऊं रे, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, और मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। ये था रूना लैला जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, और खूबसूरत गीत लिखा गया है शबाब किरानवी जी के जरिए। मन की मीत पाकिस्तानी जो एक मूवी है, ये फिल्म से हमने नगमा को निकाले। प्रभा जी एट अम्सदम सेंट्रम टंकीवाल आपके आपके लिए एंजॉय दिल की आवाज, एंजॉय यू आर उजाला रेडियो। अब की बार गीत मेरे प्यारे सुनने वालों महान सॉन्ग राइटर लिखे इंदवर जी का गीत हम पेश करने जा रहे हैं, और ये गीत काफी पॉपुलर है कुमार सानू की आवाज में। इंदवर साहब जी का लिखा हुआ गीत आप सुनेंगे दिल की आवाज में, कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

चंदा तुझे देखने को निकला करता है और आईना भी दीदार को तरसा करता है। इतनी हसी कोई नहीं, इतनी हसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का बस एक तुझ में सिमट के आया। और जब से तू मिले मेरा ये दिल खिले, बस हमारे जीने को और क्या चाहिए। What a lovely song, romantic song, मेरे प्यारे सुनने वालों, कमाल की प्यार भरे अल्फाजें इंदवर साहब जी ने लिखा और कुमार सानू द टाइगर बहुत खूबसूरत हमेशा सुर में जो गाते हैं, गीत गाकर सुनाए हैं आप सभी के लिए। अपने तंचे में बेसक है अलमेरा में टोनी इसरी, थैंक यू वेल इन द दैट लॉन्ग टाइम। बाकी हम जाने लगे आप सभी सुन रहे हैं और या यूली अपनी थालता है तुम्हारे क्वेत चुरी लॉयसर, धन्यवाद टोनी एन नाद वेर के नतायन हैप्पी वाले बीर चे फरदीन तो अवनीत एंजॉय। एक गीत जो काफी मशहूर है मेरे प्यारे सुनने वालों, एक गीत जो अनजान साहब जी ने लिखे, एक दर्द भरे गीत है लेकिन प्यार भी बहुत है इस गीत में। प्यार ना हो तो दर्द कैसा, वो नगमा जो है मेरे प्यारे सुनने वालों पेश करने जा रहा हूं किशोर कुमार की आवाज में। नगमा को आप सुनेंगे

हर धड़कन में प्यास है तेरी और हर सांसों में तेरी खुशबू है। इसी धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये तू देना और तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। डट भरे नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, अनजान साहिब जी का लिखा हुआ और किशोर कुमार के डट भरे आवाज में गीत आप सभी ने सुने, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नाम। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करूंगा मेरे प्यारे सुनने वालों, इस गीत के बाद हम बढ़ चलेंगे 9 बजे के ब्रेक की ओर और उस ब्रेक के बाद जरूर से जरूर आप सभी से फिर हम मिलेंगे। पिता का नगमा आप सभी ने सुना है, अब बेटा जो साटाज बादशाह भी है गीत लिखने में, समीर साहब जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग कविता कृष्णमूर्ति और एस पे बला सुब्रमण्यम, इन दोनों की आवाजों में कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। एंजॉय।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

सहारों की परी, ये है तकदीर मेरी, जो भी समझा है मुझे वो इनायत है तेरी। और मेरे अच्छे ते कर्म जो मुलाकात हुई, मेहरबान हुस्न हुआ क्या जब बात हुई। मैंने तो ये सोचा भी ना था कि मिल जाएगी तू, जैसे लहराई सभा वैसे लहराएगी तू। जिसे देखकर आपका दिल का जो घंटी है बोले टिंग टोंग, कुछ इस तरह का नगमा है कि देखा है तेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार, और वो भी बेशुमार। हसर जयपुरी जी इनका लिखा हुआ ये गीत, और द लेजेंड सुरों का बादशाह रफी साहब जी की आवाज। प्यार ही प्यार फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सिनेमा, प्यार ही प्यार। ये उजाला रेडियो है और दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। And it is bijna 14 minuten over de klok van 9. Swagat hai fir ek baar aap sabhi ka. Enjoy the beautiful songs. Romantic songs hai aur dard bhare naye hai, kuch purane bhi hai. Abhi kuch geeton ke baad ek aur Rooha Laila ka nagma, jo mujhe maloom hai yakeenan aap pasand karenge. पेश करूंगा, एक मुतमईफ अली नखब स्नोर। पहले मैं खुद ही सुन लूं कि वही नगमा है या नहीं। फिलहाल तो लता जी की आवाज में, संगीत की देवी लता जी की आवाज में एक आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा आप तक हम पेश करेंगे। रोमांटिक या डर्ट भरे दोनों में गिना जाता है, और बात कुछ ऐसी है कि ये नगमा फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी भी थे, जीता नहीं लेकिन मेरे ख्याल से जीतना चाहिए था। संगीत की देवी लता जी।

शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत, संगीत की देवी लता जी की आवाज में गीत आप सभी ने सुना है। फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग, फिल्म का नाम आशा। अम्स्टरडम में सुनील आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके ऐप के लिए। डंकीवेल सुनील, धन्यवाद धन्यवाद। मैंने जिसको चाहा मिल गया, चैन जब से आया दिल ये गया, देखे तुम्हारी ये अदा, जाने मन हुई मैं तो फिदा। कमाल के प्यार भरे अल्फाजे जो है समीर का लिखा हुआ, और इनकी अल्फाजे मिलकर गाएंगे सोनू निगम और अलीशा चिनाय।

मैंने जिसको चाहा मुझे मिल गया, और चैन जब से आया मेरा ये दिल गया। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ, सोनू निगम और अलीशा चिना, इन दोनों की आवाजें और फिल्म का नाम फिदा। वादा के मुताबिक मेरे प्यारे सुनने वालों, एक गीत और मेरी नजर में जो आए थे रूना लैला जी का, आप तक हम पेश करना चाहेंगे। प्यारा सा गीत है और यकीनन आप सभी पसंद करेंगे। मजरूर अनवर जी ने गीत को लिखा और गीत का बोल, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूं, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। हाजी, कहती है मेरी नजर शुक्रिया।

अभी तक मेरी ये रूह बेचैन है और अभी तक है मेरा दिल बेताब सा। ये माना कि तुम दरबदर, मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा। तुम ही हो मेरी मंजिलों का पता और तुम ही हम सफर हो मेरे प्यार के। मेरे दिल में है एक आरजू, हाँ एक ही आरजू, तुम्हें जीत लूं जिंदगी हार के। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, रूना लैला जी की आवाज और गीत, खूबसूरत अल्फाजे मसरूर अनवर जी का लिखा हुआ। फिल्म का नाम अंजुमन और ये फिल्म पाकिस्तानी मूवी है अंजुमन। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, घड़ी की तरफ भी एक झलक, तो 3 मिनट गुजर चुके हैं सरे 9:03 ओवर हाफ 3। अब की बार गीत समीर का लिखा हुआ, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें। जो भी कस्में खाई थी हमने और वादा किया था जो मिलकर

जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुड़वाई में होती थी रोज मुलाकातें। और तेरी ही इन बाहों में, तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजारा। तेरे इस चेहरे को, चांद सुनहरे को मैंने तू जिगर में उतारा। कितने तेरे करीब था, मैंने तो तेरा नसीब था, हूं तो पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा। क्या तुम्हें याद है? ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, रोमांटिक सॉन्ग समीर का लिखा हुआ, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण की आवाज, और साथ दे रहे थे अलका याग्निक। सत्या जी आयतम से नाम, धंकी वेल आपके ऐप के लिए, धंकी वेल धन्यवाद। मेरे प्यारे सुनो, दिल की आवाज में देव खोली जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं। देव खोली जी भी कमाल के नगमाए इन्होंने लिखा, और ये गीत जिसका टाइटल है तू वाकिफ नहीं मेरी दीवानगी से, तू वाकिफ नहीं मेरी दीवानगी से, अगर जिद पे आऊं खुदा ढूंढ लूंगा। ओ जानम, ओ जानम, ओ जानम, कुमार सानू और साधना सरगम को पेश करता हूं।

वाकिफ नहीं है मेरी दीवानगी से। अगर जिद पे आऊं तो खुदा ढूंढ लूंगा, ओ जानम ओ जानम ओ जानम। खूबसूरत प्यार भरा नगमा देवखोली जी का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और साधना सरगम। ले चलते आपको एक डट भरे गीत की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। डट भरा है और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग ये गीत। शुरुआत में इनका लिखा हुआ एक गीत, आज हमने जो प्रोग्राम शुरुआत में ओपनिंग की थी मान जाइए का एक नगमा किशोर कुमार की आवाज में, नक्शलाल पुरी जी इनका लिखा हुआ एक गीत। वो प्यार भरा था लेकिन ये एक डट भरा गीत है किशोर कुमार की आवाज में। और लालपुरी जी ने क्या लिखा कि उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकराओ फिर साथ मेरे आओ। पेश करता हूं ये डर भरा नगमा हीरो निवार, और वो भी दिल की आवाज में।

कदमों को न रोकोगे, संजीव रिवाजों की हम तोड़ के निकलेंगे, दीवार समाजों की दूरी पे सही मंजिल, दूरी से न घबराओ, आ जाओ कि जीने के हालात बदल डाले, हम तुम जमाने के दिन रात जो है बदल डाले, तुम मेरी वफाओं की एक बार कसम खाओ। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, डर भरे किशोर कुमार की आवाज और नक्शलाल पुरी जी का लिखा हुआ, फिल्म का नाम कॉल गर्ल मेरे प्यारे सुनने वालों। और ब्रेक के उस पार नक्शलाल पुरी जी का एक और खूबसूरत गीत डर भरा आप तक हम पेश करेंगे। फिलहाल तो इस घंटे का आखिरी गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, और इस आखिरी गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों एक नगमा है जो समीर ने लिखा, पंकज उदास और साधना सरगम मिलकर गीत गाएंगे, एक डर भरा गीत है। और इस गीत के बाद ब्रेक, ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम जरूर फिर मिलेंगे।

जितनी तुम पे जितनी तुम में है अदा उतनी ही वफा, जितना जहां में प्यार है तुझसे मुझे मिला, हां तुझसे मुझे मिला, बढ़ती जाई ये बेताबी जितना करूं नजारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, क्योंकि तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है ये जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में, हमें तो आना पड़ेगा इस दुनिया में दोबारा। बहुत खूबसूरत हसीन अल्फाजों में, शब्द में प्यार के बयान दोनों ने मिलकर किया है, किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाजें और इंदवर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग हमने निकाले हैं मूवी जिसका नाम है जाबाज। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, 11 मिनट गुजर चुके हैं 10 बजकर और 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे, तो मतलब ये कि हम आन परे हैं आखिरी घंटे में। अभी धीरे धीरे धीरे कुछ पुराने नगमाएं आप तक हम पेश करेंगे और एक गीत हमने वादा किया था नक्शलाल पुरी जी का, दादा मन्ना डे जी की आवाज में, शराब का सहारा। हमेशा जब टूटे हुए दिल होते हैं दौड़कर शराब का सहारा मनुष्य ले लेता है, क्या ये सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम। मैं गीत पेश करता हूं दादा मन्ना डे जी की आवाज में, नक्शलाल पुरी जी का लिखा हुआ, कि जिंदगी के गम भुलाने के लिए शराब का सहारा मैंने ले लिया।

बेखुदी में डूब जाने के लिए शराब का नशा मैंने ले लिया, जिंदगी के गम भुलाने के लिए शराब का नशा मैंने ले लिया। बीते दिन कुछ इस तरह याद आए, बीते हुए दिन कुछ इस तरह से याद आ गए, मेरी आंखों में अंधेरा सा छा गए। इन अंधेरों को हटाने के लिए शराब का नशा मैंने ले लिया। दर्द भरे नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, टाटा मन्ना डे जी की खूबसूरत आवाज में नक्शलाल पुरी जी का गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम दिल की राहें। वो बीते दिन याद है, वो पल छिन याद है, गुजारे तेरे संग जो और लगा के तुझे अंग जो, तेरा वो मुस्काना, तेरा वो शर्माना और वगैरह वगैरह। खूबसूरत गीत हम आप तक पेश करने जा रहे हैं। इसका कई वर्जन है, मूवी में भी, और अमित खन्ना जी ने लिखा। मैं अजीत सिंह का वर्जन आप तक पेश करता हूं, ये रानीवार दिल की आवाज में।

वो बीते दिन याद है और वो पल छिन याद है, गुजारे तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो, बाहों में तेरी सिमटना वो मेरा, जुल्फों में मेरी लिपटना वो तेरा, समय सब ले गया बस यादें दे गया, क्यों टूटे ये खूबसूरत सपने। क्या एक दफा एक दफे फन अजीत सिंह सौदराय एसस्ता नाजल कार हीर एनिक दुर्क नतुलक लाइव प्रोग्राम में दीफन आशा जी मनत मांगनी आज, ये भी खूबसूरत था और आशा जी की आवाज में नगमा आप सभी ने सुना है। अमित खन्ना जी का लिखा हुआ स्वाख में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं हिरवाल्डो और मार्खड़ी जी, दंकीवेल आपके ऐप के लिए एंजॉय आजकल स्पाय ना हुफे जाए के, देखो ना हमारी ये छोटा सा मेघा दुनिया में किकर लांच में एस्तपोना का मौसम देखो आ गया है उड़ फुड़ के सीधे स्पाइया द्वार्स तो फ्रांकराइक और बेल्जियम हमारे देश में आ गया है। तो हिरवाल्डो जी और मार्खड़ी जी एंजॉय दिल की आवाज और बहुत बहुत दंकीवाल आपके आपके लिए। मुकेश का एक नगमा जो इन्होंने गाए हैं सुमन कल्याणपुर जी के साथ चंद्रू जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूं। तू सबसे हसी है दिलरुबा और दिल तेरे बिना है बेकरार,

हम तो तेरे दीवाने हैं और तेरे बिना बेगाने हैं। हमने सुने ये गाने हैं तो ये और किसी को जाकर अपना गीत सुना। तो सबसे हसी है दिलरुबा और दिल तेरे बिना है बेकरार। खूबसूरत प्यार भरा गीत जिसमें काफी छेड़छाड़। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी की खूबसूरत आवाजें। चंद्रू जी का लिखा हुआ गीत, फिल्म का नाम रामू तो दीवाना है। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप अवश्य चेक कर लीजिएगा www.ujala.nl तमाम इंफॉर्मेशन, टारगेट नंबर, ईमेल और काफी बहुत जो लिंक्स हैं वहां पर आपको मिलेंगे, और जिसके जरिए से भी आप दुनिया के जिस कोने में होंगे आप उजाला रेडियो को लाइव सुन सकते हैं www.ujala.nl। हमारे तो खास और प्रिय महान कवि सॉन्ग राइटर लेखक सहेल लुधियानवी जी, इनका लिखा हुआ एक दर्द भरा गीत पेश करने जा रहा हूं। सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में इन्होंने क्या लिखा है कि बर्बाद है मोहब्बत की दुआ साथ लिए जाए, टूटा हुआ इकरार वफा साथ लिए जाए। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनो, ना सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स लेकिन ये प्रोग्राम में भी दर्द भरे नगमाए हुआ करती है, और ये दर्द भरा गीत अगर आप इसे एहसास करें, महसूस करें तो वो सीधे आपके दिल के अंदर में घुस जाएंगे।

मोहब्बत की दुआ साथ लिए जाए। रफी साहब जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों और हमारे प्रिय सहील लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत, लैला मजनू फिल्म का नाम।

की रात्रि में हम रजिंद्र कृष्ण जी को भी हिस्सा देंगे इनका लिखा हुआ गीत, एक फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग आप तक हम पेश करेंगे। एक गीत जो रोमांटिक है और ये खूबसूरत गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों, कई फैशन है इस फिल्म में। फिल्म का नाम फरार, लेकिन मैं आज ये गीत किशोर कुमार और लता जी की फैशन जो है आप तक पेश करेंगे कि मैं प्यासा तुम सावन और मैं दिल तुम मेरी धड़कन। रोहनी जी सुन रहे हैं प्रोग्राम रोहतादाम शहर में, तो रोहनी कल्लू जी को हम कहेंगे डंकी वेल आपके ऐप के लिए चून करने के लिए यूआर पर, और आप मजा ले वे दिल की आवाज किशोर कुमार और लता जी।

मैं प्यासा तुम सावन और मैं दिल तुम मेरी धड़कन होना हूं तो। किशोर कुमार और लता जी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम फरार। मेरे प्यारे सुनो आलो, मुकेश जी को हम पेश करेंगे लता जी के साथ। प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गीत हियर ऑन यू आर इस तरह से

मेरे प्यारे सुना, आप सुन रहे हैं धुन। इस धुन से प्रोग्राम दिल की आवाज हम आराम करते हैं, और जब भी ये धुन हम दोहराते हैं तो मतलब ये कि आखिरी गीत पेश करने जाएंगे, और इस आखिरी गीत के बाद हम यहाँ स्टूडियो से रुखसत होंगे। आईवी जहांगीर आयत अमस्टरडम दंकीवेल आपके ऐप के लिए, और इकबाल ख्वाजा जी दंकीवेल धन्यवाद, शुक्रिया आपके ऐप के लिए। मेरे प्यारे सुनो, उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से आज हमने प्रोग्राम को सजाए हैं बनाए हैं आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। अगले हफ्ते ये प्रोग्राम फिर हम सजाएंगे दिल की आवाज, और उससे पहले हम आ जाएंगे आने वाले शनिवार। आने वाले शनिवार रात्रि में 7 बजे से 12 बजे 5 घंटे लगातार पेश करेंगे हीरो निवार प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। आज के लिए आप आज्ञा दीजिए, और जाते जाते आप सभी से बस यही कहना है कि रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

पहली नजर का अभी आपने नामा सुने हैं उजाला रेडियो पर सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए हमें कदम ला रहे हैं हेडलाइंस फॉर फंडा इन विंद में उजाला मिड डे कॉफी चाय का प्रोग्राम में पिंग सिर वीकेंड आ रहे हैं पिंग सिर वीकेंड आ रहे हैं मोखलक या पिंग सिर वीकेंड मोखलक एन फन वर्म्स ओई गेमेंटे नेदरलैंड दिस टू अपने के तैयार कर सॉरी फॉर दैट यू दिस है ये सोमर क्लियर एड्रेस है